गौरी, वो मुझे मिली क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि अब मैं, मेरी उम्र भी हो गई है, अब इस उम्र में मैं कहाँ ढूंढूंगा किसी, और कौन, अच्छा मेरी थेरेपी भी शुरू हो गई थी तब तक, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार एक्चुअली मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है, और जो मैं प्यार करूं वो पहले अपने आप से करूं, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वो उस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। 58-59 का मैं हो गया हूं, मैं कहां अभी मुझे कौन मिलेगा, तो ये मेरे माइंड में थॉट, आई हैड फेल्ट के मुझे अभी कौन ऐसा, तो वो बाय मिस्टेक एक्चुअली गौरी और मैं मिले और हम लोग कनेक्ट हुए और हम लोगों को एक दोस्ती बढ़ी, एक प्यार बढ़ा, इज्जत बढ़ी, तो वो हो गया। मैंने कभी प्लान नहीं, बल्कि मैंने तो सोचा था कि बस ठीक है, अब मेरे पास मेरे बच्चे हैं, अम्मी है, सिबलिंग्स हैं, मेरे इतने करीब रिश्ते हैं, मुझे एक पार्टनर की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाकी रिश्ते इतने हेल्दी हैं, किरण, रीना और मैं आज भी पानी फाउंडेशन में साथ में काम करते हैं और हर रोज साथ में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, एक जेन्युइन वार्मथ और लव है हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एज अ फैमिली। आई थिंक रीना और मैं और किरण और मैं हमेशा फैमिली रहेंगे, हस्बैंड वाइफ शायद ना रहे, बट वी विल बी फैमिली ऑलवेज।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

0: Chutney on Local Vocal.
1: मामा मामी, अरे काका काकी, अरे हम तो के अभी एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ हाँ, एक कहानी सुनाऊंगा। अरे हम जब एक दिन रास्ता पर चला था तो हम एक लड़की के घर पहुंचा था। हाँ पहुंचा था, तो हम वहां पर गया था और देखा था उस लड़की बहुत सोच में था। तो हम पूछा है, ये लड़की काय के तू सोच में है रे? तो लड़की बोला, हम मालूम नहीं है कि हमारा माई बाप तो कहाँ गया है। तो हम बोला, अरे पगली, हम तो क्या बताता है तेरा माई बाप तो कहाँ गया थे। उस लड़की के पास बहुत सुंदर नाम था, उसके नाम मोनिका।

0: station.
1: I love it.
2: I love it.
0: Lotus FM. Lotus FM. A proudly South African radio station. Radio station.
3: Third and final of the third and final hour of the show. Let's go. Yeah, it sounds like I'm tired, but nevertheless, we're still keeping that music going all the way till midnight. Chill vibes coming up in this last and final hour of the show. Starting off with this one. You know it, DJ Peromo. Papa Kehete. Let's go.
4: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है नो रियली आई मीन इट और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है